0: देवी गाउँमा काठमाडौँबाट डाक्टर आउने बारे सूचना।
1: यही असोज 9 गते शुक्रबारको दिन
0: पेट, छाती, सुगर प्रेसर, थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन रौनिया एवं पाइल्स फिसर फिस्टुला विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाहद्वारा बिरामी जाँच उपचार तथा अपरेशन हुने जानकारी गराउँदछौ। उक्त दिन दम रोगीहरूको लागि फोक्सो सम्बन्धी विशेष जाँच पीएफटी समेत गरिन्छ। स्थान केपी पोली क्लिनिक भुरीगाउँ बर्दिया।
2: पानी घर डान पानी बर्से टिकी मन
3: छटपटाइ
4: जोखिम उहमा र बहियासे बचकला पहिलह सावधानी अपनाए। लद्या खोलम पानी बरल बाकलसे सावधान रही। एम्बुलेन्स सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के सम्पर्क विवरण कर सूची बनाई। एकचोटे प्रयोग के लाग झटपट झोला तयार पारी। वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता म ख्याल करी।
5: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश।
6: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन छ सधैं बाघ सुन।
7: दिदी हजुरसँग सबै थोक छ त, तैपनि हजुर किन निराश हुनुहुन्छ?
8: हो साईले, छन त सबै थोक छ, छोरा छ, छोरी छ, घर परिवार छ, लाउन खान पुगिरहेकै छ, तर के गर्नु मनमा शान्ति छैन।
7: किन, के भएर?
8: ठुलो मान्छे बनेर समाजमा राम्रो काम गरेर नाम कमाउने इच्छा छ, तर के गर्नु बिहे गरेपछि यो कुरा मेरो लागि सम्भव भएन।

0: सबको सोन सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।

0: यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला साँझको 6 बजेको छ।
1: Solutions